इतिबा करो, अल्लाह ताला तुम्हें पसंद करेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। तो मोहब्बत का मियार इतिबा है, मोहब्बत का मियार बिदअत नहीं है। जो लोग बिदअत नहीं करते, सबर करते हैं फिर बिदअत नहीं करते, अगर सबर नहीं कर सकते तो बिदअत पर बिदअत से रुक नहीं सकते। सूद खोरी, सूद का मतलब है कि आप बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी चीज के पैसा कमाते हैं। आपने किसी को 10,000 दिए, आप कहेंगे एक महीने के बाद मुझे 12,000 देना, 10,000 ले जाओ। ये 2,000 जो ज्यादा आपने लिया, आप किसी क्यों, कोई मेहनत है, आपने कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया। अगर ये तर्ज अमल जायज होता तो आप सोचिए दुनिया में क्या होता। आप जानते कि गुलामी का जो जमाना था, उस गुलामी की वजूहात में से कि बुनियादी वजह यह भी थी कि फकीर जो है, मिस्कीन जो है, उसने कर्ज लेना है, अमीर ने उसे कर्ज देना है, इस शर्त पर, सूद पर कर्ज देना है कि वापस जब आप मुझे करेंगे तो इतनी परसेंट ज्यादा होगा। उसको जरूरत थी, उस फकीर ने ले लिए, उस मिस्कीन ने ले लिए। जब अदायगी का वक्त आया, उसे लिए क्यों थे? अपनी जरूरियात पूरे करने के लिए। जब आज उसके पास नहीं तो एक महीने के बाद भी नहीं, उसे तिजारत थोड़ी करनी थी उसके साथ। तो उस महीने, एक महीने के बाद आया, फिर कुछ नहीं मेरे पास, ठीक है और कर्ज ले लो और इस पर इतने परसेंट है, 10 और बढ़ा दिया। तीसरे महीने 10 और बढ़ा दिया, 10वें महीने 10 और बढ़ा दिया। अब वो तो बेचारा गर्क हो चुका है, वो एक महीने की सूद अदा नहीं कर सकता, वो 10 का कैसे अदा करेगा? आखिर में क्या हाल है? इस सूद की अदायगी जो है, अगर जो अपना अपना माल ले चुका है, देखें अपने 10,000 ले चुका है, ये जो वो अदा नहीं कर सकता वो फकीर या मिस्कीन, वो 2,000 है जो उसने देने नहीं थे असल में। तो हल क्या है? हल गुलामी है, और रजिस्टर कर दिया जाता था कि फलां शख्स फलां का गुलाम बन गया है, बस जाहिलियत के जमाने में। सुभानअल्लाह, फिर उसे, उस आजाद इंसान को खरीदा जाता और फरोख्त किया जाता बकरे की तरह। सूद है, इसी सूद ने, आपने देखा है ये ग्लोबल क्राइसिस जो हुई है, आलमी बहरान जो हुआ है मवेशियात का, इसकी बुनियादी वजह सूद है। आज अगर कोई मुसलमान आलमी बात कहे तो पूरी दुनिया चीख उठती है, इनको क्या पता, इन बेचारों को क्या पता, ये तो मौलवी साहब, इनको क्या पता है? अमेरिका और यूरोप में जो मुआशियात के माहिरीन हैं वो सब जमा हुए, भाई दुनिया का मसला हो गया है, इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है? आप रिजल्ट जानते हैं क्या निकला? ये देखिए, दुनिया के सबसे माहिरीन हैं, दानिश्वर हैं, जहां से लोग पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं मुआशियात में, वो लोग जमा हुए और उन्होंने कहा इसका हल ये है। दो हल निकाले हैं, नंबर एक, सूद खत्म कर दिया जाए। जब तक यह सूद रहेगा ये मुसीबतें रहेंगी। मेरे पास वक्त में बताते हैं सूद ने किस तरीके से आलमी बहरान को पैदा किया है, और ये दर्श गुजर चुका है आलमी बहरान के असबाब और इलाज। मैं भाई बहन से गुजारिश करता हूं कि आप सुने, तकरीबन 2 घंटे के करीब दर्श है, उसमें मैंने पूरी तफसील बयान की है कि क्या वजूहत थी, क्या असबाब है और किस तरीके से उसका इलाज करना चाहिए। बहरहाल उन्हें कह दो है, एक तो सूद को खत्म कर दिया जाए, और दूसरा है टैक्स की शरह जो है, टैक्स जो है उसकी शरह को कम कर दिया जाए 2% तक। फिर तो इस बहरान से निकल सकते हैं। इस्लाम में टैक्स तो नहीं है, इस्लाम में क्या है? जकात। कितनी देनी है? 2.5%, 2.5%। दुनिया के माहिरीन ने आज इस तमद्दुन के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में इस बात की तहकीक की है जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, उसकी तहकीक की है, यही निजात का जरिया है। उन्होंने कहा दो, दो जो है उनके नजदीक ठीक होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स जुल्म है, लेकिन जकात इंसाफ है। जकात में आप किसी फकीर को देंगे तो दो बेहतर या 2.5 बेहतर है? 2.5 बेहतर है।